पार ब्रह्म निभागी पूरी, ताई बात न रहिया उरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर घर नाम सुम्हारे। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। माता पिता जो पाला रखाओ, वड़भागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जब जी वे से वड़भागा, हर अमृत बाणी गावे। साधा की तूरी नहावे, अपना नाम आपे दिया। प्रवकरण हार रख लिया, हार दर्शन प्राण अधारा। क्यों पूर्ण विवन विचारा, हर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी, सोरठ महला पनवा। गुर पूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जय गीता सुहेले, हर कृपा पा मिले। हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले वल पावो। जी कै संग सहाई रखाओ, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सा जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइये। बौड़ ना जोनी पाइये, जे देवै पुरख विधाता। हर दिन ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक सरणी पाया, सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे कीती पूरी, प्रव रव रया पार पूरी। खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना। गुर के चरण कवल तारे, बिघन ना लागे तिलका कोई। कार्ज सगल सुवारे, हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए। पादत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते। सबला थे पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाइये। सा संग मिल त्याइये, मन बांछित फल पाए। गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा। जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया। प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा। दैद सदन मेघ कटा काट, दामन चमक डरायो। सेज अकेली नींद नौ नैने, फिर परदेश सिधायो। हुण नहीं संदेश रोम आयो, एक कोसरो सिद्ध करत लाल। तब चतर पात्रो आयो रखाओ, क्यों बिसरे यो लाल प्यारो। सर्व गुणा सुखदायो, मंदिर चर के पंथ निहारो। नैन नीर पर आयो, हो पीत पयो है बीचो। सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पाद पर दो। बिन पेखे दूर आयो, पयो कृपाल सर्व को ठाकुर। सगरो दुख मिटायो, कहो नानक हौम में पीत गुर खोई। तो दयार बीठ लो पायो, तब रहो अंधेश्वरो मायो। जो चाहत सो गुरु मलायो, सर्व

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सवनाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महल्ला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नहाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, जिस बासर विखेन को तावत के बदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमख नहीं ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यु बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जब गी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मान ताटी जम की वासी, सोरठ महला नामा रे नर ये साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुबना बिन सद लगत न बार रखाओ, बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार, अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार, कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार, सोरठ महला नामा ए जग मीत ना देखियो कोई, सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहाओ, दारा मीत पूसन बंदी सगरे तन स्यों लागे, जब ही निरतन देखियो नरको संग शाड़ सा भागे, कहो का या मन भौरे कहो इनसे उन्हें लगायो, दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो, स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो, सोरठ महला नाम मान रे गयो न गुर उपदेश, हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ, ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो, कर पर पंज उधर निज पोखियो पास की न्याई सोयो, राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना, उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना, रे हो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी, हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी, सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने वर पै नहीं जा कहे कंचन माटी मान है रखाओ, नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना, हर्ग सोते रहे न्यारो नाय मान अपमाना, असा मनसा सगल त्याग गए।

ते बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सदगुर लैर लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शन प्यारे, साचे शब्द विचार। भौजल पार उतारिन पाई, सदगुर बेड़े चाड़। मनूरे ते कंचन पै भाई, गुर पार सुमेल मिलाए। आप छोड़ नाओ मन वसिया पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हौ वारी हो वारणे पाई, सदगुर को सद बलिहारे जाओ। नाम निधान जिन दिता पाई, गुरमत सहज समाओ। गुरबिन सहज न उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। सदगुर की सेवा सदा कर पाई, विचों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी संसार। प्रेम पदार्थ पाईए पाई, सच नाम आधार। जो सदगुर सेवे अपना पाई, तिनके हो लागो पाए। जन्म सवारी अपना पाई, कोल पी लई बगसाए। सच बाणी स शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए। नानक नाम हर मन वसे पाई, तेस बिघन न लागे कोए। सोरठ महला तीजा, हर जियो सबदे जापदा पाई। पूरे भाग मिलाए, सदा सुख सुहागणी पाई।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदलाहो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल साजन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, तब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दबियो, तुत्या गई विखाए। सगुर का शब्द सुनना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए। नानक गुर शरणाई उबरे, सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सब दरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमण मरना मिट गया, काले का किश ना बसाए। हर से ती मन रब रहया, सच्चे रहया समाए। नानक हो बलिहारी तिन को, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक लखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह वस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो ने हो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे में हो। जो हर दर्शन की उस्तद है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

संग लाई, अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुका।

अणमड़िया मंदल बाजे में सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मिलो राम स्नेही जे मिले दे सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन ना मैं तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अशतराज विशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया आनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भुगवै सोई कहे रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रे बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी अब हे कासो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुन फल

राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत पार हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुर तर चिंता मन काम तीन बस जाके। चार पदार्थ अचतसा सिद्ध नवृद करतल ताके। हर हर हर ना जपे रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही। व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाही। सहज समाध उपात रहित फुन बड़े पग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय तार जन्म मरण पै भागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम

तौ हम जाति। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस, भगत हेत गावे रवदास। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी।

आग साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस

ऐसी भगस करीजे पंत नानक परम पड़ खूले गुर प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सदगुर स्यों मन मानिया।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

जिन जल सुखेत बढ़ायो कमल हेत बिन सुखे पवरा उन मार्ग निकस न पायो। आप मान एक स्यो मोकीना मरे न जावे सदगी संगे सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हित कुंतर लै फांक्यो ओ पार वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा। दे कुटंब लोभ मोयो प्राणी माया कौल बटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुखेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ। ना को मेरा दुश्मन रहया ना हम

चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखिठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत जन्म जन्म के किल विगत दुख फागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुते निकसियो नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

पंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमकी सजन सुहेले अराखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल बिद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय धारी ओड़ गोपाल, सरन परयो पूर्ण परमेसर, बिनसे सगल जंजाल, रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नारक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना।

सतगुर प्रसाद छोड़ जाए से करे पराल कामन आवे से जंजाल संग न चाले तिन संगीत जो बैराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन पदार्थ खोए गुवारा।

प्राण पत्यत्राक सगल गए मरना रहाव चंदन चोरस पोग करत अनेक विखिया विकार दिख सगल गए फीके एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जान तान तन अपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो अर्थ द्रव देख काश संग ना ही चलना या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला ना ही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान एक निरंकार नानक मन लगना तनाश्री महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लो मोह मां पौजल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे साल संग जपन संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार कुन गोविंद बिचारे साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे तनाश्री महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास माले हे लोक परलोक संग सगाई जद कदम होए रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए ना साके जाले रहाओ निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक मार दूध जैसे बाले सागर मैं भोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बाहर ठाकुर भगतन का रबर या सर्वठाई रखाओ ताको कोई ना पहुंचे नकारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनाश्री महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूर्णवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हरजन टेक स्वामी जे को अपनी ओट समार है जैसा वित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हार है रहाओ आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनाश्री महला पंजवा जा को हारंग लागो इस जुग में तो कई तगे सूरा आत्म जिने सगल वसता के जा का सदगुर पूरा ठाकुर गाई गए आत्म रंग

दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ को प्रभु कृपाल रहाओ। मां आनंद मंगल रूप तुमरे भजन अनूप रसाल हृदय चरण सब सगुर को नानक बंद उपाल। तनाशरी महला पंजवा अपने उद खिलावे भोजन अपने उद खिलावे सर्व सुख हो रस देव मन की नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत पूत जत कत तद तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत के पाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राजमाल जोबन तन जीरा इन ऊपर लय बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवन दे पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिरस न कतहु जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो।

गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्युना आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

जन राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा। राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीवत जन नानक,

राम रघाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मृत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सोख पलत सोख नित सुख सिमरनो।

गगन प्रव्याप बुझाई नान कुदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अनदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निधान नानक दास पाया तन्हा श्री महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया तैन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विखला दे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

पंजनो जियो दुख हर्त करता सुखे स्वामी चरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पए पंजनो आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो हुए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया जी जनसा वस तेरे तगर तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो नित जपे तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन उठा आप तूठा हर से सही मातया गुर चरण लागे महाभाग सदा अनदिन जागया सदा सदा सिमर तब्द स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु अमोलई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरू मर मना जाना संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ हनुमान सरगरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना प्यार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना कह कबीर सो परमे नाही पगलग राम रहे सर नाही तिनते पैर पैर ते करिया आप कटे तन छीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कमन बिद कीजे सोधन आमन लागा माल पिता भाई सुध बनता कहो कऊ है का रहाओ जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना जो जन पाओ भगत कह जाने ताको अचरज काहो ज्यों जा जल में पैसन निकसे

दुकृत सुकृत थारो करमरी अरहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरश्री स्नान रे उलझन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एगा वारी माया पुयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमराखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी थाम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तों वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु न जाने गातमित तेरे मूर्ख मुगद एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुगद सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आपे सतगुर समुंद मथाहा आपे मथ मत तत कढ़ाए जप नाम रतन ओ महाराम सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा हर घर पगदड़ी मन पाई हर घर नाम ओ महाराम आपे वरदाना वरसह गुरमुख पूंजी नाम सहा हर घर दाद करो प्रभावे गुण नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला चौथा मेल सत्संगत संग गोराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा हर घर कृपा तार मधुसूदन मिल सत्संग ओ महाराम हर गुण बाणी शर्म सुनाहा हर कृपा सदगुरु मिलाहा गुण गावे गुण बोले बाणी हर गुण जप ओ महाराम तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा हर घर नाम ना पुजे पुजाहा हर घर अतुल तोल अदपारी गुरमत जप ओ महाराम तब कर्म तर्म घर नाम जपाहा किल विख मैल पाव तो वाहा दीन दयाल हो जन ऊपर त्यो नानक नाम ओ महाराम जैत सरी महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जान है कवन इहां जगमीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत रखाओ माता पिता बनता सुत बंधव इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को ना सहाई मुक्त माल तनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बेगानी अवध ता मैं संतोख न पाया हस्त रथ असव पवन तेज तनी भूमन चतुरंगा अंगना चलो इन मैं कछुए ऊड़ सिधायो नांगा हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइये नानकी हां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाईए जैत सरी महला पंजवा घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो विष्णु भई मैं बुबद सुनते कहो सुहागन सही यो रखाओ को कह तो सब बहार बहार को कह तो सा महियो वरना दिसे चिन्ह लखिए सुहागन सात बुझियो सर्व निवासी कड़कड़वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहे तो सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जैत सरी

मनसा पूरव जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरव बुझ प्रभ कहो जय तसरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कर कर तसे बसेरा अरहाव दुख आराधन दुख आराधन बिसरे न काहू बेरा नाम जगत कोड सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस भौर न होई है फेरा जय तसरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पापक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जय तसरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा अरहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जय तसरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जय तसरी

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा नानक शरण परो जग बंदन राखो बिरद तुहारा जय तसरी महला पंजवा शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद तलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अनदिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया इस मोहन लाल प्यारे ओ फिरो खो जंतिया ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नयन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात जिवें तसंतिया जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रे हब्बे सगिया मूह कई ना जहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ के चेतिया हिक डू इक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुणतासा किन्नी मैंडा लाल रीझाय हौ तिस आगे मन ढेइया नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया यार वे पिरिया पणपाणा किश नी सी छंदा यार वे तैराव्या लालन मूह तद संदा लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाने बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई महामंगल रहसथिया फिर दयाल सदना वरंगिया वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई जय तसरी महला पंजवा कर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कस न जाए अकथ नांग प्रसरणागति रखन को समरथ शांत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया केते करो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नांग दया धारो ताड़ पव जल फेरिया सलोक निरतन पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का ना हो नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ शांत दूसर ना ही ठाओ का पै जाइये आड़ पैर कर जोड़ तो प्रत्याइये चाहे सो पर सदा अपना मने चिंदया पाइये तजमान भो विकार दूजा एक स्यो लिवलाइये अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइये बिनवंत नानक तार कृपा साज नाम समाइये सलोक हरे मन ता को त्याइये सब जाके हाथ राम नाम तन संचिये नानक निर्भय साथ शंत साथीड़ा प्रभ एक दूसर ना गे कोय तान तनंतर आप जल थल पूर सोय जल थल मही यल पूर रहे सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही प्यंत गुणता के क्या गणी पर शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होय त्रोक चित जे चितवया सो मैं पाया नानक नाम त्याय तो सुबाया शांत अमन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जो तरले पर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अघानिया कह पूजा लीने दया कीने अपने कर मानिया ले अंक लाए हर मिलाए जन मरना दुख जले बिनवंत नांग दया तारी मेल लीने एक पले जैत सरी शांत महला पंजवा पाधाणु संसार गार्भ अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया
लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत न आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता हे करत बिहावे कोई दिस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम कन नहीं खटया उद्म करे अनेक हर नाम ना गाव ही परमे जून असंख मर जन्मे आव ही पशु पंखी सैल तरवर कंत कशु न आवे बीज बोवस भोग भोगे किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु अपना पाव ही बिनवंत नानक परमे परमाए किन एक टिकन ना पाव ही जो बन गया बेतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया नैन नैन दीसे बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया हया ना माने सिर खाक शान जिन संग मन तन जालिया श्री

राज कपटंग रूप कपटंग धन कपटंग कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते बेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुहना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई मा।

नाद को रंग के बेदया सनमुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना थूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग श्रवणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच से पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार पगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करणंग आ रमणंग संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटंग सफल नांग सो मुहूर्त कीव न सका पाए सुख मिति हू बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त परा संयोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड़ो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय दुवारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत विशल तेरा बिरद हार पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मुहे सारिया कर गए लेहो

दयाल सागर संसारिया तलोक संत उदरण दयालंग आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओर उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जना सो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हर जस निरसुन त्रोक दया करणं दुखरणं उच्चरण नाम कीर्तन दया पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो।

रही है। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लइए। सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम माद पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा तार दूजा दो पदे एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम। अबर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रखाओ। राज मार अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम। ताए ताए वो विद को थावे सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम। ओ नानक संतरे न

कर्म जपे ही राम नाम निर्मल हैरी तरहाव प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रव नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को महर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रामान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ।

आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोबिंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। सो साहु सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन कौ करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

होवन हार, अगम अगाध ऊच अपार, जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गावे, जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सेमर सेमर सेमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरे संस

राम सुमावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुरसिख आए मिल।

अवसर बीत्यो जात है, कयो मान लय मेरो अरहाव, संपत रहतन राश्यों आत्नेहो लगायो, काल फाज जब गल परी

तीन तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू बिशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोगना खिंता जोगना डंड जोगना पसम चढ़ाई है जोगना मुंदी मूड मुड़ाय जोगना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाव। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरभो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सतसंगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई, सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर अंग लाए, गुरमुख हर हर नाम सुमाए, हर अंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ, हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलू ला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नजर करे ता सदगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे, सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लोभाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे, सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरविदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय, सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाईए, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरति सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद विखिली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा, जिथे हर आरा दिए, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, अरहाओ सह संगति संघर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये, वा के हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे, निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वड़े आई, हर तन निरपो सदा सदा।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सिरट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

पाइए अंत न लइए मंत्र से चरणारे पावो दान पीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कौ गुर कृपा तारी प्रभा देन हिस्तारे सूही महला पंजवा कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचर कठोर

काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना ए आना, माया मोर अंग लपटाना, अरहाव लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, बहोर बहोर लपट्यो जंजारा, अरहाव दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार ज सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब धंधे, अरहाव कहो नानक प्रभ बख्श करीजे, तार कृपा मुझे साथ संग दीजे, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए तिस नाम लेना, अरहाव सूही महल्ला पंजवा, धर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पहाण लय लटकावे, पर में पूला सागत फिरता, नीर बरोले खबखा मरता, रघाव जे पान को उठा कर कहता, वो पान ले उसको डुबता, गुनेगार लून हरामी, पहाण नाव ना पार गरामी, गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता, सूगी महला पंजवा, लालन रावया कवन गति री, सगी बतावो मुझे मती री, सूहूब सूब सूवी अपने प्रीतम के रंग रत्ती, रघाओ पाप मलोव संग नैन पतीरी, जा पठावो जाओ ततीरी, जब तब संजम देव जतीरी, एक निमुख मलावो मुए प्राण पतीरी, मान तान अंगबुद हतीरी, सा नानक सुहागवतीरी, सूही महल्ला पंजवा, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझगी पेख पेख मन साधारा, तू

एक करै अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। सूही महला पंजवा, मीत साजन सुध बंदब पाई, जद कद पेखो हर संग सहाई। जात मेरी पत मेरी तन हर नाम, सूग सहज आनंद विश्राम रहाओ। पार ब्रह्म जब पैर सनाहा, कोड आबद तिस बेद तनाह। हर चरण सरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिसना बेदार। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभु के नित गाहा। आनंद विनोद

पूरे भाग प्राप्त होई। अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई, प्रेम शोभा करत कसाई, निर्दय जंत हृदया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तरवास न देवे दुत रमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

तेरा रूप अगम है, अरूप तेरा दरसारा। हौ कुरबाणी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सब इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहार। राग सूही महला पंजवा, कार सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए, जिसनु होए दयाला। साई भगत जो तुद पावे, तू सर्ब दियां प्रदपाला। मेरे राम राय संतां टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो प्रवान। मन तन तू है आधारी।

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लिहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो रिणनावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे से ती रत्या जन्मना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगीए जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो रहाओ प्यारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिर बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबदर ते मन माहे जियो चिट्टे जन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जी।

सच्चे की लिव उबर है, बक्से बक्सन हार जियो, आनको की जे मित्रड़ा, खाक रले मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया, उल पुलिया वे जाए जियो, नदर प्रभु ते छुट्टी है, नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान भी हुणिया, गुर बिन

तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर सा बास जियो, पाणे तख्त वडाइया, पाणे भीख उदास जियो, पाणे थाल सिर सर्व है, कामर फुले आकाश जियो, पाणे भवजल लंघी है, पाणे मंज परियास जियो, पाणे सो सो रंगला शिवतरता गुणतास जियो, पाणे सौ पीहावला हौ आवण जान मुइयास जियो, तू सौ अगम अतोलवा हौ कह कह टह पैयास जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन पूह प्यास जियो, गुरसबदी सौ पाया सच नानक की अरदास जियो, सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा तेस निव निवला गोपाए जियो, आखां बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा मेरा मान अंत न काहू जाए जियो, इहो मरताए कूंडे वसा मैं मार्ग द्यो बताए जियो, हौ आया दूर हौ चल कै मैं तक्की तौ सरणाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो, इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो, क्यों पावे हर दरसावड़ा नै लगे तत्ती वाओ जियो, हौ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो, हर भगत खजाना बख्सया गुरु नानक किया पसाओ जियो, मैं भौड़ना तिशना पुखड़ी हौ रजा तृप्त अगाए जियो, जो गुरदी से सिखड़ा तेस नेव नेव लागो पाए जियो, राग सूही।

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम भुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज ना पाया, सदगुर पूछ ना मार।

प्रसोई, गुर की कार करे तन बालड़िए, हरवर दे मिलाए राम, हर के रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए सच सुमाए, सच वरते सब थाई, सच्चा सीगार करे दिन राती, कामन सच सुमाई, हर सुखदाता शब्द पछाता, कामन लया कंठ लाए, नानक महली महल पछाणे।

चाय मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया। फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर। सद नवतन बाल।

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आओ संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अनदिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर न जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवेंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहेन सुनाम त्याए इहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे होमे ममता काम क्रोध चितराई राम अंतर चितराई थाए न पाई बिरता जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटम सुध पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई हाँ पूछो अपना सतगुरु दाता किन वेद दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवत्या एव मरिये राम जीवत्या मरिये पौजल तरिये गुरमुख नाम सुमावे पूरा पुरख पाया वड़ पागी सच नाम लेवलावे मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वड़े आई नानक प्रपाया शब्द मिलाया।

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सबल दर्श पेटिया गुरपूरा नानक सब बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया।

सब दिवसे आए गए कंठ लाए, मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे, सुन पए बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे गारे, उपजा तत ज्ञान सहुरे पेई है।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड़ भागी पाई है।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञान।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रंपे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

तो प्रभ अपना सदा ते आईए, सोवत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल तल मही जल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर न कोई, मेरा कर बनिया बनताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइया, करी नदर स्वामी सुखे गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिए।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीशे वो में अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जम पिख है, कारगी में सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय दिखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया।

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, जो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना। बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मान बाज राम नाम रामा, गुरमत हरस पाईए होर त्यागो नेफल कामा। रखाओ हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जपिए वड़े कर्मा। नाम हीन त्रिग जीवते, तीन वट दुख सहमा। ओए फिर जून पवाईए, मंद भागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूर्व लिखे वड कर्मा। गुर सदगुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सबल जनम्मा। बिलावल महला चौथा, हमारा चित लुभ तुम्हें बिखिया। बहु दुर्मत मैल भरा, तुमरी सेवा कर न सके प्रभ। हम क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मान जप नरहर नाम नरहरा।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहे आ जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवां चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुहि मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिए बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हरख सोगत रह निरारा सेरी ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए, जत जत जाइए तत धृष्टाए रघाव। अनक अरंग निर्गुण एकरंगा, आपे जल आप ही तरंगा, आप ही मंदिर आपे सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरघाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म।

पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया। रब रहया प्रसम आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ देखा भूख बो तप्त व्यापिया, शीतल पए हर हर जस जापिया। कोड़ जदन संतोख न पाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया। देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बलाबल मोहल्ला पंजवा, गुरपूरा वडभागी पाईए। मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना। किल काटे पर गुर के चरना। रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार। सिमरत शास्त वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे। जन नानक कौ

हर रहाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार, दृढ़ मान सा बिनसी है क्या लगे ग्वार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सदगुर सेवया छे अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वडियाईया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जीव दाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बसना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ। करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो, अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो। पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो, हृदय प्रकाश प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिल पाया मन तन सीत लागो। बिलावल मोहल्ला पंजवा लाल रंग तिसको लगा, जिस केवड़ भागा मैला कदे ना हो वही न लागे दागा। पर पाया सुखदाइया मिलया सुख पाए, सहज सुमाना पीतरे छोड़ा न जाए। रघाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृता घान्या गुर अमर कराया। सो जाने जन चाखया हर नाम अमोला, कीमत कई ना जाइए क्या कह मुख बोला। सबल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पाव तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बिलावल मोहल्ला पंजवा राखो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारे सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद फूलते तो बख्शन हारे। रघाओ हम अवगुण करे असंख नीत, तुम निर्गुण दाता रे। दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देव हो सब दया तार। हम अकिरत कन्हारे लाग परे तेरे दान स्यों, नए चितक समारे। तोय ते भार किश नहीं पव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे। बिलावल मोहल्ला पंजवा दोष न काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कई एकाए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ। ज्यों तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा, नी तरिया तर तेरिया एक नाम अधारा। जो तुम

छोड़े सो करे, तुझ बिन कछ नाहे, प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छट जाहे, तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रघाव, खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग ब्राह्मण सापूर, जित जित लाभ हो तित तित लगे स्यानप सब जाली, जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सबके तुम ते मंगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए, बिलावल महला पंजवा, साध संगत कहे बास बै कलम सब नसना, प्रभ से तीरंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ, हर चागत त्रापया मान रस लय हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना, शीतल सांत संतोख होए सा बूझी तृष्णा, दैद तावत मिट गए निर्मल थान बसना, राखन हारी राखिया पय प्रसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना, बलावल मुहला पंजवा, पानी पखा तीस दास कै तब होहे निहाल, अराज मिलक सिकदारिया अग्नि मै जाल, संत जना का शोरा ते चरणी लाग, माया तारी छद्रपत तिन छोडो त्याग रखाओ, संतन का दाना रूखा तो सर्ब निधान, गृह सागत छत्ती प्रकार ते बिहू समान, भगत जिना का लूगरा ओढ़ नगन न होई, सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई, सागत स्यो मुख जोरे अध विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे एक ऊते छूटे, साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई, दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई, बिलावल महला पंजवा, श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो, संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो,

अंध कुब में गलत थे, काढे देखा थे। ओए हमारे साजना, हम उनकी रेन, जिन पेटत होवत सुखी, जी दान देन रखाओ। परा पूर्वला लिखया, मिलया अब आए, बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाय। भय बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान, दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम। नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार, करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार। बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन, जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई, आप गने बेगाना। दुख तदे जद विसरे सो प्रचित आए, संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए। रखाओ ऊचे ते नीचा करे, नीच खिन में थापे, कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया। करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई, हर दिन सरायण नानक जपे साध सदबल जाई। बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीश कर पग पखलाओ, बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पावो, देव सूनी साध के बीजन ठो लावो। रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो, वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो, नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ। बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह, जो हर गुण गाय साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी, प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी। रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई। जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया, काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रा पाया। मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रहाव औगद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे साध संग मन तन हित फिर दुख ना जापे हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चित निभत रहे गुरु शब्द अखूट।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मतन बसे प्रपगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सबे करे सजथान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रखाव गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलिया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवां, दो पदे कर पंजवां, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद अवर उपास सत्या।

तौ की निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर इने गुरदेव रखाओ। सदा सदा घर त्याई है, किस बिघन न लाग, नानक नाम सलाई है, पय सुमन पागे। बिलावल मोहल्ला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी मिल साध समाग, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पाग। राम नाम जो जन जपै, आन दिन सद जागै, तंत मंत न जो गई, तित चाख न लागै रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह, बिन से अनरागै, आनंद मंगल रस राम रंग, नानक शरणागै।

मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया, आन दिन रंग राता तांत सहज आनंद करा, पूर्ण पैयास सुख पाया हर साध संग, सिमरत गुणतास रखा तुन स्वामी अरदास जान, तोमे अंतर जामी फानतन अंतर रब रहे, नानक के स्वामी।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपै दा पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए। जो

रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध न अहंकार संते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते यो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोझ पई। बिलावल मोहल्ला पंजवां क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक।

बल जाओ दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोस कहो ना मान्यो मन चीना। बिलावल मोहल्ला पंजवा गुरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म।

क्या गुण तेरे सार संहारी, सास सास प्र तुम्हें चितारी, कृपा निध प्रवदीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रव्यापे, बिलावल मोहल्ला पंजवां, तन तन जोबन चलत गया, आराम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निसपोर भया रहाओ, अंग प्रकार भोजन नित खाते।

मूला नस्यों प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताची दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रघाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कद बात करे दुख होई, तद कहने ते रहे न कोई, बिन रसरा ते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मन मुख कथनी है पर रहत न होई, ना वो फूले थाओ न कोई, मन माया बंध्यो सरजाल, कड़ कड़ व्याप रहे हो बिख नाल, जो अंज तो दिसे काल, कार्य सीधो हृदय समाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई, मन मुखो में पत गवाई, आपे करते भगत कराई, गुरमुखे आपे दे वड़ियाई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पुकारे भगत स्रोत, सुन सुन मन वेख जोत, शास्त्र सिमरत नाम गरड़ामंग, गुरमुख सांत उत्तम करामंग, मनमुख जोनी दुख सहामंग, बंधन टूटे एक नाम वसामंग, मन्ने नाम सची पद पूजा, किस वेखा नाही को दूजा, देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोय, बिलावल मोहल्ला पहला, मन का कहया मनसा करे, यो मन पुन पाप उचरे, माया मन माते तृप्त न आवे, तृप्त मुक्त मन साचा पावे, तन तन कलत सब देह अवभाना, बिन नावे किस संग न जाना रखाओ, की तेरस पोक खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसम में ठेरी, खाकू खाकर ले सब फैल, बिन सब दे नहीं उतरे मैल, गीत राग तन ताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुर्मत दर्द ना जाए, टूटे गुरमुख दारू गुण गाए, होती उजल तिलक गलमाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम सार माया मद पिया, बिन गुर भगत नहीं सुगतिया, सूकर स्वान गर्द मंजारा, पशु मलेश नी चंडाला, गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाईये, बंधन बाध्या आईये जाइए, गुर सेवा ते लहे पदार्थ, हृदय नाम सदा किरतार्थ, साची दरगे पूछ ना होए, माने हुक्म सीजे दर सोए, सदगुर मिले ता तस को जाने, रहे रजाई हुक्म पछाणे, हुक्म पछाण सचे दरवास, काल विकाल शब्द पै नास, रहे अतीत जाने सब तिसका, तान मन अर्पे है इहो जिसका, ना उ आवे ना उ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल मोहल्ला तीजा, अष्टपदी कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अभिमान, बिन नावे पाज लहे गनदान, सतगुर सेव नाम से मन चीत, गुर पेटे हर नाम चेतावे, बिन नावे होर

पुराण पुकारे धर्म करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाए तन निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित राहे चलैया। बिलावल मोहला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सतगुर परस हर नाम समैया जन कीते हर नाम टकैया सतगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मस मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया मन मुख माया मोहे आपे यो मंत्रिशना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिन्ही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया। बिलावल मोहला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तदे ग्रस्त पया बनवासी एक मनुआ टिके ना टकैया तावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नाराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दहे दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लहिया आसन सिद्ध सिखे बहुत तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मेरे साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया पंडज जेरज सेतज उत्पुज तब वर्ण रूप जीजन तो पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर तरलोचन औ जात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन थना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मन तन काढ़ दियो गुर आगे, जे हर प्र मार्ग पंथ दिखैया, कोई आण सुंदे सादे प्रव केरा, जित अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काढ़ दियो चरणा तल, जो हर प्र मेले मेल मिलैया, चाल चल सगी हम प्र प्रबुद्ध, गुण कामन कर हर प्रभ लैया, भगत वत्सल उआ को नाम कहित है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, खिमा सीगार करे प्र खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस पो करे प्र मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ गए बनया, मन मोती चूर वड़ गहन गहनैया, हर घर श्रद्धा से वशाई, प्र छोड़ न सके बहुत मन पैया, हे प्रभ आवर आवर किस कीजे, तब बाद सीगार फोकट फोकटैया, कियो सीगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तू अगमुख साई, क्या हम करे तेरे बस पैया, दया दीन करो रख लेवो, नानक हर गुर शरण समैया, बिलावल मोहल्ला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन श्रद्धा मन बहुत उठैया, गुर देखे श्रद्धा मन पूरी, क्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मेल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रा मेले, मैं तस आगे सिर कट कट पैया रहाओ, रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्र देखे बिन नींद ना पैया, वैदक नाटक देख पोलाने, मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया, हाँ खिन पाल रहे ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गईया, जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हाँ तस विट्टो बाल बाल कुम गईया, अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुरु शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जी आवे, प्रभ आए मिले कन टील न पैया, तार कर क्रिया चार बधाए, मन पाखंड कर्म कपट लू भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया, पिता ताए क्या नाम सवैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर घर भगत जमैया, भगत भगत करते घर पाया, जा हर घर हर घर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया, जिनको ठाकुर कृपा थारी, बां पकर नानक कड़ लैया, राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी कर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रखाओ, प्रभ चरण कमल अपार, हम जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कते ना जाहे, हर नाम रसना कहेन, मल पाप कलमल दहेन, चढ़ नाव संत उधार।

नानका नाम ध्याए। दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी, दीना नाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी ले हो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देह, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महापयान, चित गुप्त कर्म है जान, देन रैन साख सुनाय। नानका हर शरणाय, पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल। मन प्रीत दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वडभाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग। मै गले कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद। जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चातरक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतर सपार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण।

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवो पाए वेसा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी फेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय

अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस्त्याख सब तृप्ता से एक रंगराते एक मरतूर एक दार कर साचे देख दूर झूठे को नाही पदनाओ कब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले भगत दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे शब्दे फेदे तौ पद पावे तार कर वेस खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिस मैं मनुआ रहा लिव लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबलवंडा।

फलोहार पिए फल जाए, रस खाए साथ गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐनस जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पे मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जातो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, सब सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डर डर मरे ना बूढ़े कोय, निडर बूढ़ मरे पद कोय, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लह पावे, रायस तामस सदकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, योग जूत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मन मुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

लाए, सगुर का दर्शन सबल है। जेहा को इच्छे तेहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है, तब तृष्णा पुख गवाए। हारस पी संतोख हुआ, सच वसया मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सच्चो दैद पसरिया, गुर के सह सुपाए, नानक जिन अंदर सच है।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बिलावल, नेत उठ कोरी गागर आन, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूझे, हार हार रस लपटो, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते, तब ते सुख ना पयो रखाओ, सुनो जिठानी सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरयो, करके देव किदर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरयो बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर साजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, चेत

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए उत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

अहंकारी जन पर माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया तुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सतगुर कर तेरी करके पारा खो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रब रही है रखाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले।

खुदे जाहे वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख तन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रखाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अट पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े पूबत राजे हैं सिद्धे सुहागन

प्रपाए कर कृपा आप मिलावे राम मोको हरजन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हरस है मीठा मिल संत जना मुख पावे रखाओ हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे हम होत तेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे सेव जन सेवे से बड़ पागी इद मंतन प्रीत लगावे बिन प्रीति करे बो बाता कूड़ बोल कूड़ो फल पावे मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे औ काटो काड बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जीवड़ पा हुए वड मेरे जन मिलदिया टिल न लाइये हर दिन अमृत कुण सर नीके वड़ पागी तित ना भाइये राम मोको हर जन कारे लागे ओ पानी पखा पीसो संत आगे पाग मल मल तूर मुख लाई गए रखाओ हर दिन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सदगुर मेल मिलाए गए सदगुर जेव अवर न कोई मिल सदगुर पुरख तिहाई गए सदगुर शरण परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाई गए एक अपने सुहाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाए गए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखु मुख लाई गए नानक मेल मेल प्रसंगत मिल संगत हंस कराइये राम कली महला चौथा सदगुर दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर न कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रखाओ मेरे एकिन प्राण न रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया तन तन वड़ भाग गुर सरणी आए हर गोबिंद दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हार जब जपूज पाया नाम हीन तेरे से नगटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीव जी वाल लै स्वामी बिन अंतर नाम साया नानक गुरु गुरु है पूरा मेरे सतगुर नाम तिहाया राम कली महला चौथा सदगुर दाता वड्डा वड़ पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरम कथा सुनी मन पाई तन तन वड़ पाग हमारे रखाओ कोट कोट ते तीस त्यावे ताका अंत न पावे पारे हिरदे काम कामनी मांगे हिरद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उरतारे जे वड़पा होवे तां जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट निट हर जन है हर राखे कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे राग राम कल

तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

करनो मद बांसुरी बाजे जेवा तुन आ गाजा नृत्य करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता सासी गारी रघाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चिंदोआ पर्म चूला करत अकेला जलते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाद दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती फड़कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक

राय सो नर भोर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरिया।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते समाया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली मोहल्ला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी मां पुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित घर गाये आपे कड़कड़ रहा बेआप दयाल पुरख प्रगट प्रताप कपट खुराने भ्रम नाठे दूरे नानक गौगुर पेटे पूरे राम कली मोहल्ला पंजवा कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तूर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाध तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद अरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कतनाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्त

माया मोया टेढ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह नानक तरिये तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैन दिनस जपो हरनाओ आगे दरगे पावे ताओ सदा आनंद न हो वी सोग कहू न व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा परम गद पावे हर सिमर प्राणी रखाओ गण मन देखो सगल विचार ना बिना को सके ना तार सगल उपावन चल है संग पवजल तरिगे प्रभ के रंग देही तोय न उतरै मैल होमे व्यापे दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाय ताका रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कहू न बिसर गो।

प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घड़का रहता मेरा प्रभ रहाओ ताकी गई मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊच अपार सुमत सार जित हर सिमरी जे कार कृपा जिया पे दीजे सुख सहज आनंद हरनाओ नानक जपिया गुर मिलनाओ राम कली मोहल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए ओ सावधान अपने गुरस्यों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुरस्यों।

खुद होए वडियाई, अंत की बेला लए छिडाई, राम के गुण गाओ, हलत पलत होए दोवे सुहेले, अचरज पुरख तिहाओ रहाओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसे सगल संताप, बैरी सब होवे मीत, निर्मल तेरा होवे चीत, सब ते उत्तम यो कर्म, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा होए उधार, जन्म जन्म का उतरै पार, पूर्ण तेरी होवे आस, जम की कटिए तेरी फास, गुर का उपदेश सुनीजे, नानक सुख सहज समीजे।

सच सहज सुपावे मीत थाय मेरा अतपारा किन में था प्यो था पनहारा जिबन अवर न कोई जनका राखा सोई तार कृपा अरदास सुनीजे अपने सेवक को दर्शन दीजे नानक जापी जप जाप सब ते ऊच

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमरे वस नाघे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेअप्या तोहे उदम करे गाडर ज्यो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाव जाके राम बसे मन माही तुझन दुत्र पेखत नाही सगले काश वारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे सा संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मोखूजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतरो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कै आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू सा बनसूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जगदीसे ठगन हार अन ठगदा ठगे बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होय राम कली मोहल्ला पंजवा जोत पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभ नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया दिखे ठगौरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो मैं कृत पया पूर्व कमाने छोड़े नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस न बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाकी तूर काटे जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट कब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

तुम चढ़ाए करे पाखंड, माया मोह सह जम डंड, पूटे खापर पीख ना पाए, बंधन बाध्या आवे जाए, बिंद ना रख है जति कहावे, माई मांगत त्रै लोभावे, निर्दया नहीं जोत को जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करे खिंता बो थटुआ, झूठो खेल खिले बो नटुआ, अंतर अगन चिंता बो जारे, विण कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जे व इंद्री साध लुभाना, पशु पय नहीं मिटे निशाना, त्रिप्त लोगा त्रिप्त जोगा, कब विचारे चूकस सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जूत विचारे सोए, तुझ पय नौनिध तू करने जोग, थाप थापे करे सोहोग, जत स संजम तसो चीत, नानक जोगी तिर पौन मीत, राम कली मोहल्ला पहला, खट मट देही मन बैरागी, तुरत शब्द तुन अंतर जागी, वाजे अनखद मेरा मन लीना, गुरबचनी सजना पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईए, गुरमुख हर घर मीठा लागे, हर घर नाम समाई है रखाओ, माया मोह बेवर्ज समाए, सगुर भेटे मेल मलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, चित्राता मेरा मन तीरा, होमे ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे, जम जंदार ना लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय घर सोहे, शब्द विचार पए निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अनदिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गात अंतर पाई, अलेबत गुफा में रहे नरारे, तस्कर पंच सब संघारे, पार कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवधूता, तब बैरागी तत् परोता, जग सूता मर आवे जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, अनघ शब्द बजे दिन राती, अवध की गात गुरमुख जाती, तो जानी या शब्द पछानी, एको रव रहा निर्बानी, थुन समात सहज मन राता, तजो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेड समानिया, राम कली मोहल्ला पहला, सहा गणे ना करे विचार, साए ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले तोई विद जाने, गुरमत होए तहु पछाने, झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए होमे जाए शब्द कर लहिए रखाओ, गण गण ज्योतक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत्न चीनी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली शार, नावे तोवे पूजे सैला, बिनगा राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रसार्थ, मुद प्राण जप हर किरतार्थ, वाचे वाद ना वेद विचारे, हर डुबे क्यों पितरा तारे, घड़ घड़ ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मेरे ता सोजी होए, गणत गणिये से साधुक जीए, गुर की शरण पवे सो थीए, कर अपराध शरण हम आया, गुर घर पेटे पूर्व कमाया, गुर शरण न आईये ब्रह्म न पाईगे, परम भुलाएगे जन्म मर आईगे, जमदर बादो मरे बेकार, ना हृदय नाम ना शब्द अचार, एक पांदे पंडित मिस्र कहावे, दुग्धा राते महल न पावे, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोड़ मदे को जन अपार, एक बुरा पला सच एक है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक है, गुरमुख विरली एक को जानिया, आमन जाना मेट समानिया, जिनके

राख लिगे भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन लगा मीठा पाना, सब इश पुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम, शांत प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मंतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक रदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओड कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए।

काटन पय हरण तुसा गर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सो बावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसाख सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल प्रफुलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप शंत ग्रीख मरुत अत गाकड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहाग्नि दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओड तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहिया सरबठाई हर नाम नवनिद गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे न सूग सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ई पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्र गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सा

भय चूर गए, तन में चीत गवार, तन विरली सच संचया, निर्मल नाम प्यार, तन गया ता जान देहे, जे राचे रंग एक, मन दीजे सिर सौंपिए, पी करते की टेक, तंदा तापत रह गए, मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पए, टेटे गुरु गोविंद, बन बन फिरती टूंढती, बस्त्र ही कारबार, सदगुर मेली मिल रही, जन्म मरण दुख निवार, ना ना करतना छूटिए, विण गुण जम पुर जाहे, ना तिस एहो ना ओ है, अगुण फिर पछताहे, ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस कर्म ध्यान, विण नावे निरपो कहा, क्या जाना अब महान, ठाकर ही के अपड़ा, हाथ नहीं ना पार, ना साजन छे रंगले, किस पे करी पुकार, नानक प्रयो प्रयोजे करी, मेले मेलनहार, जिन विछोड़ी सो मेल सी, गुर के हेत अपार, पापुरा पापी को प्यारा, पावल दे पापे पासारा, पर हर पाप पछाने आप, ना ते सोग, विजोग संताप, नरक पड़न तो क्यों रहे, क्यों बंचे जमकाल, क्यों आमन जाना विसर, टूट बुराखे काल, मन जंजाली वेड़या, पी जंजाला माहे, विड़ नावे क्यों छूटिए, पापे पजे पचाहे, फिर फाही, फासे कौआ, फिर पछताना, अब क्या हुआ, पाथा चो जुगे नहीं बूझे, सतगुर मिले ता आखी सूझे, जो

बैराए बीर चले कर अपने बहन बरेजल जाए बाबल कहे कर बेटड़ी बाली बाले नेहे जे लोड़े वर कामणी सगुर सेवै तेहे बिरलो ज्ञानी बूझणो सगुर साज मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तय दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निकरवासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ पजे हाय उसारे उसरे टाहे सर पर सुख पी पर पुख समर्थ वे प्रवाहे परम पुलाने पए देवाने विण भागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रा पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बौड़ना पछो ताइए पब्बे भाले गुरमुख बूझे कनज करवासा पाईए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरीए गुरप्रसादी या पोचीने जीवत्या इव मरिए माया माया कर्म होए माया किसे ना साथ हंस चले उड़ डुमणो माया पूली आथ मन झूठा जमझोया अवगुण चले नाल मन में मान उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी कर्म होए विण नावे दुख पाल गढ़ मंदिर महिला कहा यो बाजी दीबान नांग सच्चे नाम वेण झूठा आमन जान आपे चतुर स्वरूप है आपे जान सुजान तू आवे से जाए फोन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उताहे से जन उबरे जिन हर पाया धंधा मुआ विगोती माया जो दिसे सो चालसी इसको उम्मीद करे ओ जियो समपो अपना तन मन आगे देओ अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट गुण की मारी होमोई सब धरती मन चोट राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदे तीर राव पुरा पीहावला सर डूगर असगाहा मैं तन अब चुरमुई विण गुण क्यों कर जाहा गुणिया गुणले प्रमिले तिन को मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी पर पूर है गुण पी वस्ते नाल विण सगुर गुण ना जापनी जे चिर शब्द ना करे विचार लस्करियां कर समले आए वजो लिखाए तार कमावे सिर तनी लाहा पल्ले पाए लाभ लो बुरियाइया छोड़े मनो मसार गड़दोई पासा की कदे न आवे हार चाकर कहिए खसम का सोए उत्तर दे वजो गुआए अपना तख्त न बैसे से प्रीतम हाथ बढ़ियाइया जय पावे तय दे आप करे किसे आखिए आवर ना कोए करे बीजो सूजे को नहीं भय दुलीचा पाए नरक निवारण नरे नर साचो साते नाए वन त्रिन टूणत फिर रही मन में करो विचार ला रतन बहुमान की प्रगुर हाल पंडार ऊत महुमा प्रमिले एक मन एके पाए नानक प्रीतम रस मिले लहा लय प्रथाए रचना राज जिन रची जिन श्रेया आकार गुरमुख बेअंत ते आई गए अंत न पारावार अड़ाड़े रूड़ा हर जीव सोई तिस बिना राजा अवर न कोई अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वसे मन माहे गुर प्रसाद दी हर पाईगे मत को परम पुलाहे सो सौ साचा जिस हर तनरास गुरम पूरा तेस सबास रूड़ी बाणी घर पाया गुर शब्दी विचार आप गया जो कटिया हर वर पाया नार सोइना रूपा संचिए तान काचा भिक्षार सौ सदाए संज तान दुबदा हुए कुवार सत्यारी सच संचया सचो नाम अमोल हर निर्मायल उजलो पस सची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकुर मानवस हों बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सुजान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खिमा बिहूने खब गए खून लख असंख गणतन आवे क्यों गणी खाप खाप मोए बिसंख कदम पछाणे अपना फूले बंद न पाए तद मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर होमे खपे खपाए सी बीजो वस विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सुने चो होए संपे को ईश्वर त्याईए संपे पुरब लिखे की पाईए संपे कारण चाकर चोर संपे साधन चाले होर बिन साचे नी दर गए मान हारस पीवे छुट्टे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान
ਹਉ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਮੋਈ ਸਦ ਰਵੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਣ ਕਣੇ ਧਰਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਗਏ ਹਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਹਰ ਬੇਨ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਪੜਨਾ ਹਰ ਬੁੱਝਣਾ ਹਰ ਸੁਖ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜਪੀ ਹਰ ਤਿਆਈਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਾਰ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੁੱਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਨਮੁਖ ਫੁੱਲੇ ਪਚਮੋਏ ਉਭਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਇਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹੇ ਆ ਜਾਏ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ ਪਾਂਦਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਏ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੇ ਸਹਿ ਸੁਪਾਏ ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੇ ਤਤ ਲਖੇ ਆਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਰਦਾ ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ ਮੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਏ ਚਾਟੜਿਆ ਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੋ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹੋ ਲਾ ਜਗ ਮੈਂ ਲੇ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ ਪੜ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ਇਸ ਆਗੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਮਸਤਕ ਕਾੜ ਤਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦੇਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਈਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ ਕਿਆ ਪਵੀਏ ਸਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਓ ਕੌਣ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਵਾਉ ਸਾਜ ਕਉ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲ ਜਾਓ ਕਹਿ ਬੈਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਬਾਲੇ ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ਕੜ ਕੜ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਏ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾਰ ਜਾਏ ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆ ਪਛਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुण रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेरे।

कचियले तुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस शब्द को जो अर्थ आवे।

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परचे परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप शाने सर्ब जिया साच उपजे साच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एका बेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझ जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुख फूले जमकी कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सास समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सब परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बेन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमती कर चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करें उदरे कारण अपने बैले पेह करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरतब छोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है कूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास जन नानक करे कराया सबको क्यों पावे ते हर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वर्तदा आपे बक्स मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रत अपने तेन तन लोभ रत न होए पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हर का पाओ दुर्मत महल गवाए नानक तेजन सोने जो रखते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिगसया ता सौंपया भगत पंडार परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार तेसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भक्ति सीगार कर नित जम्मे होए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप नेचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू खबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मन मुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केलक कटन हार।

जिस कड़ पीतर शब्द रवे सब कड़ मेरे हो सब न अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला बाटड़ी जिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंध सिर जिसे दिखावे कौन, मोहल्ला पहला हो गिरही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीखिया करे, पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप, मोहल्ला पहला सो अवधूती जो तूपे आप, पीखिया भोजन करे संताप, अवहठ पटन में पीखिया करे सो अवधूती से पुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप, मोहल्ला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध उर्ध करे निरंजन वास, चंद सूरज की पाए गंड तिस उदासी का पड़े ना कंद, बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप, मोहल्ला पहला तो पाखंडी जे काया पखाले, काया की अगन ब्रह्म पर जाले, उपने बिंद न देई चरणा तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप, मोहल्ला पहला तो पैरागी जे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मैं रोपे थम, आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सत समान, बोले परतर सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप, मोहल्ला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जोत, तन पड़ाए क्या खाजे पुत, आसत नास्त एको नाओ, कौन सो अखर जित रहे हे आओ, तूप शाम जे सम कर सह।

ते करे सुध देख, नानक जिस तुरमस्त हो वे लिखया तिस सतगुर नाल सुनेहा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की, जिस किरपाल होवे तिस हृदय वसेहा। आमन जाना तिसका कटी है, सदा सदा सुख होहा पौड़ी। जो तु पाणा जंत सो तुद बुझई, जो तु पाणा जंत तो दरगे सिजई। जिसनु तेरी नदर होमे तिस गई, जिसनु तु संतुष्ट काल माल तिस खई। जिसके स्वामी वल निरपो सो पई, जिसनु तु किरपाल सच्चा सो थई। जिसनु तेरी माया ना पोहे अगनई, तिसनु सदा दयाल जिन गुरते मत लई। सलोक महला पंजवां, कर किरपा किरपाल आपे बख्श लए। सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुर पाए पए। मन तन अंतर वस दुखा नास होए, हथ दे आप रख व्यापे पौ ना कोय। गुण गावां दिन रहन एते कम लाए, संत जना के संग होमे रोग जाए। सर्ब निरंतर खसम एको राव रहया, गुर प्रसादी सच सचो सच लहया। दया करो दयाल अपनी सिफत देहो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। महला पंजवा, एको जपिए मने माहे, एक सकी सरणाए। एक स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाहीं जाए। एको दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए, मन तन सास गिरास प्रभ इको एक त्याए। अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए। वड़

तिस दर्द निवारणो, जितु मुठा चित तिस कदे ना हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, आया हथ निदान तो रहा पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवा। उस पे निंदा नानक जी, मैं हब मंजाई छोड़िया हब किस त्यागी।

तेरे भगत जिन्नी सच तो डिट जिसनू तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर पेटे नानक निर्मल सोई सुध तलोक महला पंजवा फरीदा पूम रंगावली मंज वसूला बाग जो नर पीर निवाजया तिना अंच ना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी तंग सुवनड़ी देह विरले केई पाईन जिना प्यारे नेहे पौड़ी जब तब संजम दया तरम जे दे सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम त्याए अंतरजामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए सा संगत कै आसरै प्रभ सिउ रंग लाए अवगुण कट मुख उजला हर नाम तराए जन्म मरण पौ कट्यून फिर जोन ना पाए अंधकूप ते काढ़ियन लड़ आप फड़ाए नानक बख्स मिलायन रखे गल लाए तलोक महला पंजवा मुहब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन की मनामूल महला पंजवा अंदर विद्या सच नाए बार पी सच डिठोम नानक रविया हबताए।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

प्रसामी तुम धुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर घर राम रंगे हर घर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रगाओ जन्म जन्म के पूर चूक हम अबाए प्रसरण अगे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हमरा खो वड़ पाप के तुमरी संगत हर को ना उधरे प्रभु की ये पतत पवगे।

सदगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अदकाई परसुआ गणक उधारे पारस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल न करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत पर परारे। लग लग प्रीत बो प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म गए पसरिया मन बीजा खावारे ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लुकी जारे प्रभु को जान अंतर हृद लोचे प्रभु जन के सास निहारे कृपा कृपा कर पगत रिड़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने

मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रापाई मैं सदगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी ताबे को पुरख मुरारे संत जिना की रेन मन पाई मिल हर जन घर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सा फिरे अंतर घर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पावन सूत सब नीका करे सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत हृदय पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस बन नहीं सको तो मंदिर हमने कीरे नानक कृपा करो गुरु मिलो मैं राम जपत मन धीरे।

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रखाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निधान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पर पूर्ण काम रखाओ। बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत।

जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निद हर घर घरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप रे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संगमन।

ना यो तन जले ना तस्कर ले जाए ना यो तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए ए तन की देखो वड्याई तेजे माते अंधन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई ए तन बिन कहो किने परमगत पाई पंत नानक अकथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता यो तन पाए मारू महला पहला सूर सर सोस ले सोम सर पूख ले जुत कर मरत सो सुबंध कीजे मीन की चबल स्यों जुत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे मूड़े काए चे परम पुला न चीन्या परमानंद बैरागी रहाओ अजर गो जार ले अमर गो मार ले प्राता छोड़ तो अप्यो पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे पंत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन सो अमृत पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे मारू महला पहला माया मुइना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तटके साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच न लागे कत राजा थत टिके गुणी पए पंचायन रत बाबा साचा साहिब दूर ना देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा बिस्नर की मुनि शंकर इंद तपे पेखारी मान हुकम सोए दर साचे ताकी मरे अभारी जंगम जोध जती सन्यासी।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इसे नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण, ते पवन एका ज्योति, जे वा डंडी ओकड़ शाबा, तुलो नाम अजाती, एको हाट साव सबना सिर, वणजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े, सो बूझ जिस एक लिव लागी, जियो रहे ने प्राती, शब्द विसाए परम चुकाए, सदा सेक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बार कर एको नानक पया उदासी, राग मारू महला पहला, कर पंजवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, अहिंस जागे नींद न सोवे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने एई सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाणा सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है।

एक सच्चा सब सेमदी तुर भाग मिला बा होए, गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए, ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे, मनूरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर।

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवां, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाव सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवां, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेवो अपना, चलते राखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख सोई कर सूखा, सो हर कनी जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवां, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, संथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोह जीवन पदवी पाई, जीत आओ मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई। रघाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कसन ना जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद।

छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओ आको फिर ताव सरे, अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग रंग रच रसिया।

अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे पयो प्रसाद कृपा निध ठाकुर संत संग पद पाई कहो नानक त्रैगुण प्रमशूटा जो प्रापय सहाई। मारू महला पंजवां अंतर जामी सब जाने इस ते कहां दुलारे हो

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा बिसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो सच।

नहीं हर हर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है। निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिले, ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बक बाया, हरहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर्व को राजा। जिस हृदय नाम तुम्हारा, जाको नाम न दिया मेरे सतगुरु।

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तै रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे हो रहाओ। जम को डांड परे सिरि ऊपर, तब सोवत तय जागे हो। ता हो आपके पछताए, झूठत नाहन पागेओ। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागेओ। सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागेओ। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका। अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

ना बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्ही नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सचे वितो सचा, साचा रह चाख्या, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आरस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चुगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला विद्या, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया।

रघाव ते गुण विसर गए अपराधी। मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे। चार पदार्थ लय जग जन्मया, शिव शक्ति कर वास तरे। लागी भूख माया मुग जोह, मुग्ध पदार्थ मोहे करे। कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद ढूंढत थाग परे। काम क्रोध अहंकार वे आपे, कूड़ कुटां से प्रीत करे। खावे पोगे सुन सुन देखे, पैर दिखावे काल करे। बिन गुरु शब्द न आप पछाणे, बिन हर नाम ना काल टरे। जेता मोह में कर भूले, मेरी मेरी करते शीन करे। तान तन बिनस सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन खिसिया, ताप कंठ बरुद्ध हो नैनो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साग तराम न हृदय हरे। तुरत गई काली हूं तौले, इसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे। पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस भोगण, होवट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे। हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

बेणी संगम आठसठ अंक समाई हे। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदले।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोहे पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सहज

कर नाम सुमाया जो शरण परे की पत रख जाए पूछो वेद पुराणी हे जे सर सेवा लाए सोई चन लागे गुर के शब्द परम पौ पागे विचे ग्रेस रहे उदासी ज्यों कमल रहे विच पानी हे विच होमे सेवा।

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी सब

ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए, नानक मन तृप्तासीए।

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर भेटे सोए पौड़ी दोवें तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फेर जन्म बिनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरास सिमरत सास्त सोध देख

कर हीड़े हिक आधार यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है यो पापी मूल न तगे अहे कर करे सो अहे कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया तिस कर दीबाण अपग हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोह माओ डिणना तनी अपाहे हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

पंडिया कवन कुमत तो लागे बूढ़ो गे परिवार सगल स्यों आराम ना जपो अपा गे रखाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खाले चंदन जस पार आराम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे, तै रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवै सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर गा हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखम्मा देसो तू पल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुखेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सा तन सबर चोले, अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी।

मार्ग पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसिया गोर सतगुरु पूरा तिनके किलबिख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खड़ दर्शन कर गए गोष्ट टोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हो।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नामन धानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी आओ गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

तीन दुखी, एक मन अनाथ नाथ, राख हो कृपाल रखाओ, अनक जतन गमन करो, खड़ कर्म जुत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारियो, नहीं उठे बिकराल, शरण बंदन करना पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसर।

संग स्वामी हार गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक कहो हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाओ हर कृपा सत संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे

हर बेन जन्म अकार सजात तद गोपाल आन रंग राजत मिथ्या पैरत खात रहाव तन जोबन संपय सुख भुगवे संगन निभत मात मृत्युना देखर त्यो बावर द्रुम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गय लियो दास नानक को प्रभ जी हुए सहात केदारा मोहल्ला पंजवा हर बिन कोई न चालत साथ दीना नाथ करना परस्वामी अनाथा के नाथ रखाओ सुध संपत दिखिया रस भोगवत।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जाप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी, अंधले क्या पाया जग आए।

गल फाही दिन सजंजाल गवाया खिन पाल घड़ी नहीं प्रो जानिया जिन एहो जग त्यो पाया मान रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रगाओ ऊन दो कावल मानमुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले साबद सुरत नहीं पाई सातर वेद त्रै गुण गए माया अंधलो तंद कुमाई।

होए, निकर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम से मने आए, आपे विखे विखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का पाणा मन्ने सेजन प्रवान, गुर के

केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पड़ पड़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हां मन वसे।

अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम मुसाए, कार दर महल सदगुरु दिखाया, रंग सिवर लिया माने, जो उस कहे सो पला कर माने, नानक नाम वखाणे, भैरों महला तीजा, मसा मने समाए लय।

इनका दर्श देख मन बिकसे खेन खेन तिस को हों बलिहारी हार हृदय जापो नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पे स्वामी हम दासन दास की जे पनिहारी रहाओ। तेन मत उत्तम तेन पद उत्तम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तेन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगे काटे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तेन नग काटे सिरजनहारी और आप बुलावे आपे बोले और आप निरंजन निरंकार निराहारी और जिस तू मिले सो तू मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। भैरों महला चौथा सत्संगत साई हर तेरी जे तर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरेवे निरचरणे जग जीवन हर ध्याए तर

अरहो अराम रसायन नित उड पीवो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार भैरो महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

कहे गुरमुख भेद विरला को लहे रहाव निकट ना देख पार ग्रह जाए दर्द हे रहे मिथ्या कर खाए पैठ गौरी हर संग न जाने बाज गुरु है परम फुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड अंतर वस्त जसंतर जाए बाज गुरु है परम फुलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट सदगुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निटे सोए।

ताज मंडत बिन बूझे कहां मन ठहराना ना बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना साध सड़गी चूरे।

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माझ, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो मोहल्ला पंजवां, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया

मन प्रगट पया नाम लयत पावतन ते गया नाम लयत सगल पुरबाया नाम लयत अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुरु उपदेशा तत् ज्ञान रखाओ नाम लयत दुख दूर पराना नाम लयत आत्म मूढ़ सो गया।

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निर्तन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

तेरा परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पैरों महला पंजवां।

त्यागी विरला कोए अरगा नाम जपे जन सोए रहाओ अंग बुद्ध का छोड़या संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम त्याए हर हर हरे साजना के संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्वमय पूर्ण भगवान प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया कर कृपा जिस राखे आप तोई भगत जपे नाम जाप मन प्रगास गुर ते मत लई कहो नानकता की पूरी पई भैरो महला पनवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा संग पागे वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तर्म हो करता बंधन काटनहार मन वस तौ सु पावे निज कर बस सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहु नानक तुमरी शरणाई ज्यों भावे त्यों रखो गुसाई भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कार कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जमत्रास साध संगत हूंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सबल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई